चली ये फौज हमारी रे, चल चलम चल चलम चल। छिड़ी लड़ाई भारी रे, चल चलम चल चलम चल। चली ये फौज हमारी रे, चल चलम चल चलम चल। छिड़ी लड़ाई भारी रे, चल चलम चल चलम चल। चली ये फौज हमारी रे, चल चलम चल चलम चल। छिड़ी लड़ाई भारी रे, चल चलम चल चलम चल।

नन्ही चींटी के पर में हाथी सारे बांध दिए, नन्ही चींटी के पर में बैलूनों की छतरी से उतरे परियों के घर में।

अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी ये खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहे लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

उजाला रेडियो डे अवे प्लस पर देश भर में सुनाई देता है। तू बता दे सबको इसे बताते ऑटो में तू सुन सके तू घर में सुन सके है उजाला रेडियो और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो उजाला रेडियो।

इस भजन में ये वर्णन है कि मनुष्य अलग अलग अवस्था में अलग अलग कार्य करता है। एक काम करना भूल जाता है, वो है भगवान का नाम लेना। ऐसे कौन से कारण हैं कि वो भूल जाता है भगवान का नाम लेना, वही एक एक अवस्था को लेकर समझाया है।

माता पिता हमारा पालन पोषण करते हैं, गुरुदेव ज्ञान के द्वारा हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं तथा संतों के सत्संग से जीवन की बुराइयां दूर होती हैं। हम इनके ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकते हैं, अतः इनकी सेवा करना हमारा परम धर्म होना चाहिए।

अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां है, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 15 vragen voor maar 100 euro op उजाला रेडियो. स्टूर ई मेल नर info@ujala.nl 15 vragen voor maar 100 euro op उजाला रेडियो.

लेके पहला पहला प्यार आया है कोई जादूगर, उजाला रेडियो का प्रोग्राम है ये। और इस हिस्सा प्रोग्राम का इस हिस्सा में शामिल जो आप हुए हैं

उत्कर्ष सक्सेना से आप इस गीत को सुने। हम लोगों का तार का नंबर याद वेल तैदिंस कंतोर उरन दफ्तर के समय 020 409 0807।

0: साहब।
1: कौन? मैं?
0: जी हाँ, आप ही से कह रहा हूँ। यहाँ आएंगे आप? क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम सुनीता।
0: लवली नेम।
1: थैंक यू।
0: गाएंगे आप मेरे साथ?
1: ना, डर लगता है।
0: डरने की क्या बात है, मैं आपके साथ गाता हूँ।

दोनों हमारे साथ गा सकते हैं तो आप सब क्यों नहीं गा सकते? रेडी रेडी रेडी रेडी यस 1 2 3 4 ला ला ला ला ला ला ला बस बस बस बस बस बस बहुत हो गया बहुत हो गया बहुत हो गया. म्यूजिशियंस आप लोग मत बजाइए. रेडी 1 2 3 4 ला.

आशा भोसले एंड किशोर कुमार राहुल देव बर्मन के साथ फिल्म का नाम यादों की बारात और ये है उजाला रेडियो. Behalve bellen natuurlijk, kunt u altijd nog een mailtje sturen naar info@ujala.nl.

आवाज रूप कुमार राठौर की और फिल्म अनवर का गीत आज उजाला रेडियो का प्रोग्राम में हम आपको सुनाइए और अगला गीत कमाल खान की आवाज में होंगे।

जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना, कमाल खान की आवाज और फिल्म प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया तो डरना क्या। किस फॉर यो एक रेडियो, किस ऑल टाइट फॉर उजाला रेडियो, तू जाने तो।

छोड़ो सनम काहे को गम, हंसते रहो खिलते रहो। फिल्म कुदरत का गीत, किशोर कुमार एंड अनंत पिंटो से आप सुने। प्रोग्राम का इस हिस्सा में एक आखिरी गीत आप सुनेंगे। या हमारे कौम तो रुख तू जाने है तो।

मुंडन संस्कार होने वाला है पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉरमार होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

0: कसम।
1: और कैसा तेरा प्यार, कैसा तेरा प्यार, कैसा गुस्सा है तेरा। लता जी के साथ अमित कुमार से गीत को आप सुने, फिल्म लव स्टोरी से निकाला हुआ उजाला रेडियो पर।

प्रोग्राम आप लोग सुन रहे हैं, हमारे प्यारे सुनने वालों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम, नमस्ते और आदाब। मैं हूं सुभाष और दहाँ तक जहाँ तक मेरी आवाज पहुंची वहां तक हम आप सभी को बहुत ही प्यार से, दुलार से, दिलो जान से स्वागत कर रहा हूं। हमेशा की तरह जिनके घर पर कोई भी खुशियां, जन्मदिन, सालगिरह, विवाह, शादी, बहु, आप को हार्दिक से बधाई और तहे दिल से मुबारकबाद ईयर्स के जाते हैं। जो कोई बीमार या तो लेचार है तो उनकी तंदुरुस्ती के लिए भगवान से प्रार्थना, अल्लाह से दुआ है आप की ताकत और तंदुरुस्ती के लिए।

रेडियो का दफ्तर सोमवार से लेकर शनिवार तक खुला रहता है और वो भी सुबह में 10 बजे से लेकर शाम में 3 बजे तक फन मान दख्त में सात रख फन तीन मोरखुस तो द्रीर इंद मिला जहाँ का फोन का नंबर है 020-409-0807 पर आप लोग तार कर सके। उजाला का वेबसाइट है www.ujala.nl या तो info@ujala.nl पर हर जानकारी आपको मिल सकेगा। हमारे प्यारे सुनना प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं और चलिए गाना जो प्रोग्राम में हम आप लोग को सुनाने वाले हैं एक ऐसा है गीत जो प्रोग्राम में हमेशा हमेशा सुनने

वेल क्या हुआ तेरा वादा, इस तरह से महमद रफी साहब के आवास में गाना जी प्रोग्राम में आप लोग सुने। यू आर उजाला रेडियो है।

यार मेरा यार मुस्कुराता हुआ और गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने खान शर के किशोर कुमार जी के आवाज में, चलिए अब की बार श्री मुकेश जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में आप

वेल वेल यार, सुहाना सफर और ये मौसम है हसीन। अब इस तरह से श्री मुकेश जी के आवाज में गाना जी प्रोग्राम में भी आप लोग सुने।

0: ओ हंसनी कहां उड़ चली। आओ इस तरह से किशोर कुमार जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे, बोले पंख उड़ाकर कहां उड़ चली। उजाला रेडियो का प्रोग्राम हमारे प्यार चैनल लता एंड किशोर कुमार के आवाज में गाना जो इस बार आप लोग सुनेंगे,
1: कहां सुना

0: हाल सुनो
1: रुकी
0: अब बोले कहो
1: कुछ हुआ
0: का यार अभी सरस से खान सर के लता एंड किशोर कुमार जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने उजाला रेडियो का प्रोग्राम हमारे प्यारे सुने बोलो

अल यार जब दिन जब जब जब दिन हसीन और दिल दिल दिल जो जवान, और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने मोहम्मद रफी एंड अश

से मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई यार, पलकों में रहने दो, एहसान होगा तेरा। अवसरों से महमूद रफी जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुन रहे थे।

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जान।

बेचैन होके हम तुमसे मिले। फिल्म कसूर अलका याग्निक एंड उदित नारायण इन दोनों से आप सुने और ये उजाला रेडियो है।

और रब्बा आई ना जुदाई, फिल्म जुदाई का टाइटल सॉन्ग आप सुने अलका अलका याग्निक, हरिहरन और जसपिंदर नीरू।

जाना रेडियो सुनने वाला और उजाला रेडियो के जरिए आज वही प्रोग्राम कॉफी चाय मेरा शो हम नहीं पेश करने वाले हैं रजनीत क्योंकि हम लोग तो बता ही चुके रही तो कभी कभी हम लोग के काम हो जाए af en toe dan hebben we het ook een beetje druk. Dus vandaag geen Coffee Jai Middag Show. En morgen vrijdag, kool zoeken we een keer programma met Coffee Jai Middag Show. Zerur Hampeesh kunnen we wel hebben.

उजाला रेडियो देश भर में, तू जाने तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए उजाला इस फन हेल नहीं लॉन्ग तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए।

तोर विवाह होने वाले हैं, तोर शादी होने वाले हैं, सुन वालों। तो डीजे आप फरमाइश ऑफ उजाला रेडियो, 15 फरमाइश, 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो। दिस ga jij binnenkort trouwen? Door wie baan honen wel het, door shadi honen wel het. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: जारी है।
1: असूलों पर जहां जाए टकराना जरूरी है, बंदा जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, बंदा हो तो जिंदा हो।

लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। ये बेमिसाल हुस्न।

वो कल आया था वो आज गया, और जो आज आया है वो कल जाएगा। इसी के साथ सुनिए मृत्यु समाचार।

के साथ गमी है पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। नीदरलैंड और सूरीनाम से समस्त परिवार कांधाई और परिवार झंझन बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे है कि बीते हुए शनिचर को 73 साल की आयु में द्रियन जीवंत खियार औत लुविस झंझन कांधाई और परिवार, जॉनी कांधाई और परिवार, कार्ला कांधाई और सूरीनाम से वेली पाटक इन लोगों के भाई। अम्स्टर्डम का रहने वाला श्रीमान रॉबी सामनारायण की मृत्यु अम्स्टर्डम में हो गई है। रॉबी के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे और पहले सूरीनाम पथ मनवानी का ब्राम्स होपवेग का रहने वाला जो था। नीदरलैंड और सूरीनाम से समस्त परिवार कांधाई और परिवार झंझन बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शनिचर को 73 साल की आयु में द्रियन जीवंत खियार औत नीदरलैंड से लुविस झंझन कांधाई और परिवार, जॉनी कांधाई और परिवार, कार्ला कांधाई और सूरीनाम से वेली पाटक इन सभी के भाई। अम्स्टर्डम का रहने वाला श्रीमान रॉबी सामनारायण कांधाई की मृत्यु अम्स्टर्डम में हो गई है। रॉबी के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे, पहले सूरीनाम पथवनवानी का ब्राम्स होपवेग का रहने वाला जो था। अर्थी के दाह क्रिया कल शुक्रवार दिन में 1:30 बजे मोरखन फ्राइडाग हाल्फ ट्वे किए जाएंगे। वेस्खार्ड क्रीमाटोरियम ओक मेरवेग 275 अम्स्टर्डम ओस्टडॉर्प में निवास स्थान पर बैठक नहीं किए जाते हैं। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर ऐतफार्त फुरजोरखिंग परिवार कांधाई और परिवार झंझन और बाकी परिवारों के दुख में शामिल है।

0: आज यहाँ।
1: और मृत्यु समाचार को आप सुनिए अम्स्टरडम से बेटा महेंद्र अकलू और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए मंगलवार को 81 साल की आयु में एनन तख्त ख्यार और बेटा महेंद्र अकलू की माँ और श्रीमती इंद्रानी अकलू की सास लड़कन नीलेश और दिनेश अकलू के आजी अम्स्टरडम ओस्ट ट्रांसवाल स्ट्रात की रहने वाली विधवा सोनमती अकलू सुखू की मृत्यु हो गई है। लीन के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे और जो कि स्वर्गीय श्री भागवत अकलू के विधवा थी। अम्स्टरडम से महेंद्र अकलू और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए मंगलवार को 81 साल की आयु में एनन तख्त ख्यार और बेटा महेंद्र अकलू की माँ पतो इंद्रानी अकलू की सास नीलेश और दिनेश अकलू के आजी अम्स्टरडम ओस्ट ट्रांसवाल स्ट्रात की रहने वाली विधवा सोनमती अकलू सुखू की मृत्यु हो गई है। लीन के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे और जो कि स्वर्गीय श्री भागवत अकलू के विधवा थी। अर्थी से विदाई लेने की मौका है आज बीफे के रात में 8 बजे तक ऐतवार सेंट्रम वेस्ट खार्द के मुर्दालय ओक मेरवैक 275 अम्स्टरडम ओस्टडॉर्प में और अर्थी के दाह क्रिया आने वाले एतवार दिन में 3:30 बजे जोन द खानस्तान द हाल फीर किए जाएंगे वेस्ट खार्द क्रिमाटोरियम ओक मेरवैक 275 अम्स्टरडम ओस्टडॉर्प में। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर ऐतवार फुरजोरखिंग समस्त परिवार अकलू और बाकी परिवारों के दुख में शामिल है।

अभी नहीं, अभी नहीं। हाँ, ये वादा है कि आधी रात हो जाने पर हम जाने देंगे तुम्हें। लता जी की आवाज में आप सुने फिल्म नागिन का गीत, और अगला गीत भी लता जी की आवाज में होंगे।

0: आंखों से दिल में समा, आजा रे आ जरा आ, लहरा के आ जरा, आंखों से दिल में समा, आजा रे आ जरा
1: आ, आजा रे आ जरा
0: जरा आ।
1: आज के अब तक आज के सभी गीतों में आने की बात और फिर ना जाने की बात, मोहम्मद रफ़ी साहब से आप सुने फिल्म लव इन टोक्यो का गीत, और ऐसे फिर आने की बात और ना जाने की बात अगला गीत में भी है।

अभी नहीं, ना ना ना, थोड़ी देर और रुक जा, फिर हम जाने देंगे। शारदा की आवाज अराउंड द वर्ल्ड से आप सुनेंगे। फिर वही बात, सैया छोड़ दे बैया, फिर आने की बात और ना जाने की।

दिनों तो ऐसा होता था ना, जो कोई किसी का हाथ पकड़ लेता था तो नहीं छोड़ता था, और आज इन दिनों के बात है, इन दिनों तो हाथ कोई पकड़ता नहीं तो छोड़ने की बात भी पैदा नहीं होती है ना। तो या 3300

हो गया और बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। गीता दत्त एंड मोहम्मद रफी साहब से आप सुने फिल्म CID का गीत और ये उजाला रेडियो है। आज एक बार फिर कुछ पुराने गीतों के साथ।

जब से तुम्हें देखा है आंखों में तुम ही तुम हो। आशा जी के साथ मोहम्मद रफी साहब, फिल्म घराना का गीत आप सुने। एंड न्यू एक बार फिर लता जी।

ये है उजाला रेडियो, यहाँ म्यूजिक कभी नहीं रुकता है, नहीं नोइट, नॉन स्टॉप 24 घंटा लगातार तोर खातिर।

उजाला के ऑल टाइम फेवरेट्स जो हर दिल को खुश कर देते हैं, सुनिए और गुनगुनाइए।

0: फिल्म का नाम पूरब और पश्चिम, गीत के गाने वाले लता जी, महेंद्र कपूर और मनहर उदास। सुनने वालों, अब उजाला रेडियो का प्रोग्राम में चलिए पेश है एक बैठक गाना हरिदत्त जयराम की आवाज में, सुनिए।
1: मनुष्य के जन्म पाए लाई मनुष्य रहा इंसान, एक दूसर के धन दौलत हड़प के बस गए मर, इस जन्म में देखा गधा बन के भोगे भैया हफीज।
2: अच्छा भैया जयराम, तब जब तू मरिए तब तू कौन की होगा?
1: देख भैया हफीज, जो हम भी कोई के धन दौलत हड़प के खाए के मर जाए और जो मरब कैसे ही गधा बन के हम भी भोग अपन करनी।

अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे, और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।

ताली तक धुमी तक ताली तक जमी तक झाला आंबो तक झुकी तक ताली गेने तू तक नक तक झुमी तक नक नक झुमी तक नक नक झुमी तक नक नक झम धारी ता जग धारी ता झन झाले कोकू धारी दाबू धारी गेटे ताक झम धारी ता जग धारी ता झन झाले कोकू धारी दाबू धारी गेटे झम धारी